0: अंतर पूजा पढ़ कते संजन दुर्गा पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाए तरंदा मोहल्ला पहला
1: मानस क

0: बदे जंपुर जाए महला पहला।
1: सबो सुतक परम है दूजे लगे जाए, जमण माना हुक्म है पाने आवे जाए, खाना

जन कहे नानक सुनहो संत हो, हर भगत गोविंद चंगिया, देह कंचन जीना सविंद राम, जड़ हर हर नाम, रतना राम।

जुगो जुग अटल, दीन अर दुनी दे मालक, सर्वरे कायनात दे सांझी रहबर, गुरुआं के गुरु, पीरां दे पीर, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी, तिन्हां दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरद्वारा दूख निवारण साहिब पावन अस्थाना उपर जुड़मल बैठे गुरु प्यारे हो। सतगुरु जी ने अपार बख्शिश कृपा वरताई है, जो अपने पावन चरणा कमलां पास जुड़ के बैठन दा सुभाग सतगुरु गुरु बाबा जी ने बख्शिश कीता है। आओ गुरु प्यार वालिओ, जो धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी दियां लड़ीवार विचारां रोज़ाना आप संगतां इन्हां पावन स्थानां तों सरवण करदियां हो, ओह चल रहीआं लड़ीवार गुरबाणी विचारां दे नाल सांझ पाईए। विचारां दी आरंभता तों पहलां सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन, अपना रहमत भरिया बख्शिश भरिया हथ सिर ते रखण। सतगुरु आप रसना उत्ते वरत के पावन शब्द गुरबाणी दी विचार आप करवा लैण, और आप सरबत संगत असीस बख्शो। कोई रसना वांझी ना रखे, दोवे हथ जोड़ अपनियां मन बिरतियां एकागर करदे हां। लवाओ गुरु चरणा विच हाजरी, अदब सहित सरबत संगत मिल करके उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। एक बार फिर करो रसनावां पवित्र और मिलके आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी।

0: हर भगत गोविंद चंगिया,
1: हर राम नाम सलाह हर प्रभ, हर भगत हर जन मंगिया। हुण रब्बी प्यारे की मंग रहे, कहिंदे इक ते उहदी सलाघा है ना, उहदे गुण सलाह के उहदी वड़ियाई करके उहनूं सलाउंदिआं होइआं हर प्रभ हरी परमेश्वर नूं, हर भगत उहदी भगती, हर जन मंगी आ उहदे सेवकां ने मंगी। रब दे प्रेम रंग विच रंगे हुए जीव रब दे कोलों जदों मंगदे उहदी भगती होई मंगदे ने, कोई संसारक वस्तुआं नहीं, पदार्थ नहीं। उहदे प्रेम रंग विच रंगिया होया उहदी बंदगी नूं मंगिया। संसारक वस्तुआं संसारक पदार्थ सुते सिद्ध सहज सुभाव मिल जांदे ने जदों साडे कोल बंदगी होवे। हुण इहनूं आपां गुरु साहिब दी बाणी च पढ़ीए। सतगुरु बाणी राहीं प्रगटाउंदिआं इक जिक्र करदे, नव निधि अठारां सिद्धि पिछै लगियां फिरै जो हर हिरदै सदा वसाए। हुण इह नौ निधियां ते अठारां सिद्धियां प्रतीक काहदियां ने? संसारक सारे सुख सहूलतां वस्तुआं पदार्थां दीआं। जिहड़ा इत्थे इक रहि जाए उह अगे नहीं वधदा, जिहड़ा अगे वध जाए उहदे मगर मगर ने। बहुतात जीव इत्थे रुक जांदे ने, जदों नव निधियां मिल जांदियां अठारां सिद्धियां मिल जांदियां फिर जीव रुक जांदा। असीं जदों उहदी बंदगी वाले राह ते तुरदे आ ना जी, एक समा ऐसा आउंदा है जदों अकाल पुरख विच लीन हो जाणा, जिवें आपां उत्ते पढ़दे आए हाँ, उहदे विच लीन हो गए। हुण रूप किहदा बण गए? अकाल दा। अकाल नूं किसे चीज़ की कमी हो सकती है जी? अकाल नूं किसे चीज़, जिवें एक राजा है उहदे कोल खजाना है, बहुत वड्डा खजाना, राजा राजगद्दी ते बैठा है। हुण जे आपां राजे नूं कहीए भी अपना खजाना मैनूं दे दे, राजे ने नहीं देना। ते जे समा ऐसा बन जाए भी राजगद्दी ते बह ही असीं जाइए, फिर राजे कोलों खजाना मंगना पएगा? वो राजा ते रहा ही नहीं, राजा कौन बन गया जिहड़ा राजगद्दी ते बैठा है? हुण जिहदे कोल तख्त है जिहदे कोल ताज है उही राजा है, फिर खजाना किहदा होया? असीं राजे कोलों खजाना उन्ना चिर हो सकता है मंगीए जिन्ना चिर राजा कोई होर है। जिद्दण आप राजे बन गए उद्दण खजाना मंगण की लोड़ थोड़ी पैंदी है, उद्दण ते खजाना अपना ही है। अकाल पुरख दे कोलों असीं मंगी जाने उन्ना चिर ही मंगांगे जिन्ना चिर असीं ये मन्नदे हां भी मैं उहदे तों वक्खर हाँ, उन्ना चिर असीं मंगदे हां। जिद्दण इह गल समझ ली भी मैं उहदे तों वक्खरा नहीं हाँ, मैं उहदा ही रूप हाँ, उहदे विच ही लीन हाँ, उद्दण मंगना थोड़ी पएगा, उद्दण ते खजाना अपना है, उदन खजाना अपना है। फिर जिद्दण खजाना ही अपना बन गया फिर मंगण दी की जरूरत है? नव निधि अठारां सिद्धि ये संसारक वस्तुआं पदार्थां दियां, इसे करके मालक जी ने जिक्र किया ना बाणी च, दाता ओ ना मंगी है फिर मंगण जाई है, ओ ना मंगी जिथे दोबारा मंगण जाण दी लोड़ पवे। ना दाता ते ना दाता दोवी चीज़ां, जे दाता मंगना है ते ओ दाते नूं मंगी जिहदे कोलों दोबारा मंगना ना पवे। दाता ओ मंगी जिहड़ी दात वी दोबारा मंगनी ना पवे, इको वरी ओ झोली भर दे। सतगुरु कहिंदे जदों जीव उहदे विच एकमिक हुंदा ना, लीन हो गया जीव, हुण किसे पदार्थ की जरूरत नहीं है, वस्तु की जरूरत नहीं है, उपरामता। यही कारण है रब्बी प्यारे उहदे प्रेम रंग विच रंगे हुए मस्त ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਪਰਾਮਤਾ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਾਲਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਹਰ ਭਗਤ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ, ਹਰ ਜਨ ਮੰਗੀਆ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਾਚਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਦਾ ਤਾਰ ਮੈਂ ਨਿੱਤ ਚਿਤਾਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਜੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਾਤੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਮੰਗਿਆ ਕਰ। ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਤਾ ਆਪ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਝੋਲੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਆਖਰੇ ਹੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਸੁਣੋ, ਹਰ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਚੰਗੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਦਾਰਥ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਰ ਭਗਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਸਤੂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਕ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਚੰਗੀਆ, ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਉਹ ਆਪ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ

मन तन हुए निहाल, जा गुरु देखा सामने, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सलोक महला दूजा, किस ही कोई कोई मन मानी एक दो, क्यों नाम रिजै रोए, जा लग चितना आवही, किस ही कोई को मन मानी एक दो, क्यों ना मरी जै रोए, जा लग चितना आवही, महला दूजा, जा सुख तां सो रावियो, दुख भी संभालियो, नानक कह सियानिए, कंत मिलावा हुए, पौड़ी हाउ क्या सलाही कर्म जंत, बड़ी तेरी वड्याई, तू अगम दयाल अगम है, आप ले है मिलाई,

जो तेरी शरणागति तिन ले है छड़ाई, नानक बेपरवाह है तिस तिल ना तमाई। जो तेरी शरणागति तेन ले है छड़ाई, नानक बेपरवाह है तिस तिल ना तमाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुर प्रसाद। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहिगुरु जी का खालसा,

जो तेरी शरणागति तिन ले छड़ाई, नानक बेपरवाह है तेस तिल ना तमाई। जो तेरी शरणागति तेन ले है छड़ाई, नानक बेपरवाह है तेस तिल ना तमाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओहंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद। एक ओहंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद। एक ओहंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद। एक ओहंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद। एक ओहंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद। वाहे गुरु।

ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗਮੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਓ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਦਵਿਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵੇਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ ਉਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀਐ ਦੁੱਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਓ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਵਾ ਨਾ ਕੋਏ ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਇਸਨਾਥ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਅਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਿਨਾ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀ ਵਾਸ ਜਿਨਾ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿੰਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਖਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਾਨ ਚਿਤਵਹੇ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਹਿਤਾ ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰਸੇ ਰਿਜਕ ਸਵਾਹੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ ਊੜੇ ਊੜਿਆ ਵੈ ਸੈਂ ਕੌਂਸਾ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਸਭ ਨਿਦਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਦਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ
जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा भरिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल त्रिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा भरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर गम्मा गम पारा सब ते आवहि सब ते आवहि तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर ते आवो हो संतो जी सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समान एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बडाण तू आपे दाता आपे भुगता जी हां तुद बिन अवर ना जाना तू पर ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाण जो सेवहें जो सेवहें तुद जी जन नानक तिन कुर्बाण हरते आवहें हरते आवहें तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जैना हर त्याया जी तिन टूटी जमकी फांसी जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जी तिन कापो सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहण तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनक करें हर पूजा जी तप तप ही जप ही भय अंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुद आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करहें सो होई तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी तुदे आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी ते आया जिस नाओ कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुगवाया तुद आप विछोड़या आ मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहीं
जी जंत सब तेरा खे विजोग मिल बिछुड़या संजोगी में जिसना तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिंदु जा अवर ना कोए तू कर कर विखे जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़ भाई रे निवासा पानी पावक तिन्हे किया पंकजों मोह पग नहीं चले हम देख तहें डूबी अले मान एक न चेतस मूड़ मना हर बिसर तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पड़या मूरख मुगदा जन्म भया प्रणव तू नानक तिनकी शरना जेना तू ना ही विसरया आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा किते ना काम मिल साध संगत भाजे केवल नाम श्रम जाम लाग पव जल तरन कै जन्म वृथा जा रंग माया कह रहाओ जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जन्या हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रखो हो शर्मा जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जन्या हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रखो हो शर्मा इक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई अमरी करो हद रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सवै तुम कावो हो आप हाथ दे मुहि बचावो हो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सवेरन को आए संगरिए पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें झाड़ कोई अवरण त्याहूं जो बर चहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन शतर हमारे मारिये आभाद मुझे उबरिये मरण काल का त्रास निवरिये हो जो सदा हमारे पच्छा श्रीअस्तु जो करी हो रक्षा राख लियो मुहे राखण हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिव जो अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो
वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जौन काल सब लोक सवारा नमस्कार है तहें हमारा जौन काल सब जगत बनायो देव दैंत जक्षण उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिवकन को शिव गुण सुख दियो शत्रन को पलमो बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चिंटी दे कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछन्ने कट कट के बट बट की जन्ने जब युद्ध करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देहे अपारा जब आकर्ख कर तुहू कब हूँ तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझ विचारे तुम सब ही ते रहत नरालम जानत बेद पेद अर आलम ड्रंकार निर्विकार निर्लंब आद अनीर अनाद असंभ ताका मूड़े उचारत पेदा जाको पेव नावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव ड्रंकार का चीनत नहिव आप अपनी बुध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राब कहीं पूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहो फूल राजा हवे बैठा कहो सिमट भयो शंकर अकैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव आजोगा स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखे उबारे असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच्छ करो रणगाता जे आस्तु तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तहावे मरे पुरख जान पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को इक बार ते है ताके काल निकट न है रच्छा हुए ताही सब कला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कला कृपा दृष्ट तन जाहे न हरे हो ताके ताप्त नकमे हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शह शवै सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दुख तेरा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी सर्व ठोर मो हो सहाई दुष्ट दुख ते ले हो बचाई खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे
नेहो बारी सर ठोर मो हो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई सवैया पाए गहे जब ते तुम्हारे तब ते को आंख तर नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिम्बत शास्त्र वेद सवाए बहु वेद कहे हम एक ना जान्यो सिरियस पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तो हे बखान्या दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गए हो तुहारो द्वार बाहीं गहे की लाज अस गोविंदास तुहार सगल द्वार को छाड़ के गए हो तुहारो द्वार बाहीं गहे की लाज अस गोविंदास तुहार राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद अनंत भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वादियां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइया शब्दो तंगावो हरी केरा मान जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब मसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारणा सबना गल्ला समृत स्वामी सो क्यों मनो मसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहेबा क्या नाही घर तेरा करता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा सच्चा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जैनो भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए बसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दिया एहे वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सपागे कर सपागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कहे नानक तै सुख होआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो बड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसुरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पाए सरसे
पूरे गुर ते जानी सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहा पर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तुरे सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहा पर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे मुंदावणी महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृती नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचाए तिसका होए उदारो एह वस्त तजी नहीं जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिए सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवां तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई तरस पाया बेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले तां जीवा तन मन थीवे हरे आ तरस पाया बेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले तां जीवा

0: हे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: गुर तुम पहरदास, जियो पिंड सब तेरी रास।

की सोदर रहरास साहिब जी दे जाप होए बाणी पढ़दियां सेवा संभाल करदियां अनेक प्रकार दियां भुलां गलतियां हो जांदियां ने अखर वाधा काटा भुल चुक माफ करनी अगां तों समत बख्शनी।

का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा गया भई अकाल की तवै चलायो, साब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो, गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुरां की जो प्रभु।

जह खेले श्री नारायण तन तन ओ राम बैन बाजे मधुर मधुर तुन अनहद गाजे तन तन तू माता देवकी जय गृह रामैया कमलापति दूर हों देख डंडौत कर छड़ सिंहासन

गुरु कै जन्म मरण दुख जाई दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाई। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ श्लोक महला दूजा

हे गुरु, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। सोहिला राग गौड़ी दीप की माला, पहला एक ओहंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीत आखिए करते का हुए बिचारो, तित कर गावो सोहिला सिवरे ओ सृजनहार। तुम गावो मेरे निरपाओ का सोहिला, हों वारी जित सोहिले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जीड़े संभालियन देखै, गा दे मनहार। त्रिदाने कीमत ना पवै, तिसदाते कमन सुमार। संबत सा लिखिया मिलकर पावो तेल, देहो सजना सी सड़ियां। जो हो वैसा सो मेल, कर करे ओ पहुंचा सदड़े नित पवाना। सदन हरा सिमरी है नानक से दे अवाना। नरागा सा महला पहला, शे कर शे गुरु शे उपदेश। गुर गुर एको वेश अनेक, बाबा जय कर करते की तोए। सो कर राख वडाई तोए रहाओ। विश्वे चस्या कड़िया पैरां, थिति वारी माँ हुआ। सूरज एको रुत अनेक, नान करते के केते वेस। राग तनासरी महला पहला, गगन में थाल रव चांद दीप। कवने तार कमंडल जनक मोती, धूप मल्याण लो पवन चवरो करे। सगल बन राय फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ, सहस ताव नैन नान नैन है तोहे को। सहस मूरत न एक तोही, सहस पद बिमल नान एक पद। गांध बिन सहस ताव गांधे विचलत मोई। सब मैं जोत जोत है सोए, तिसद चानण सब मैं चानण होए। गुरसाखी जोत प्रगट होए, ज्योतिष पावै सो आरती होए। हर चरण कवल मकरांद लोभित मनो, आनंद न मोहे आई प्यासा। कृपा जल दे नानक सारे को, होए जानते तृणाए वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर बहु भरे अमल साधु खंडल खंडाए। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मनारल मंडल मंडाए। कर साधु अंजलि पन वडाए, कर डौत मन वडाए। रहाओ सा कतारा साध न जान्या, तने अंतर मैं कंडाए। ज्यो ज्यो चले चुभै दुख पावै, जमकाल सहस डंडाहे। हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन मरण पव खंडाए। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खान बै मंडाए। हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे राख राख वर वडाहे। जन नानक नाम दा टेकरना में सुख मंडाए। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो बेनंती सुन मेरे मीता। संत टैर की बेला, इया खार चलो अरला। आया गै बसन सहेला, आओद कट दिन सरे नारे। मन गुर मलका सवारी रहाओ। ये संसार विकार संसे मैं, तरियो ब्रह्म ज्ञानी। जिसे जगाए पिया वै रस, अकत कथा तन जानी। जा को आए सोई बिहाजो, हर गुरु ते मने बसेरा। निज कर मैल पावो सुख सहजे, बौड़ ना हुए गो फेर।

अमृत वेला सतनाओ वड़ियाई विचार करमा नदरी मुख द्वार नानके वै जानिए सब आपे सचिया डंडौत वंदन अनकवार सर्व कला समरत डोलन तेरा इक्वार

ओंकार सतनाम करता प्रति निरपहो निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सपन गुर प्रसाद असा महला पहला वर श्लोकां नाल श्लोकी महले पहले के लिखे टुंडे इस राजे की तुनी

लिव रह करन सो इच्छाचार द्रुम सपूर ज्यो निव खव कस बिमल विचार एह तत् जानियो सर्वगत अलख बडानी सहज पाए संचियो किरण अमृत कलवाणी गुर गम परमान तै पायो सत संतोख ग्रहज लयो हर परस्यो कल सुमुल वै मन विसासो गहर गो हथरत दियो गरल नास तन नठ्यो अम्यो अंतरगत पियो रिद विगास जागियो अलकल तरी जुगंतर सतगुर सहज समाद रव्यो समान निरंतर उदारो चित दारिद हरन पिखंत कल मल त्रसन सद रंग सहज कल उचर जस

0: रंग रतु नाम स्यों कल, नाम सुर नरह बोहै, नाम परस जिन पायो, सत प्रगट्यो रव लोए, दर्शन परसे गुरु कै, अठ सठ मजन होए।
1: सच तीरथ सच इशनान, अर भोजन पाओ सच, सदा सच पाखंत सोए, सच पायो गुर शब्द, साम संगति बोहे जिस

बसन कुंद दसन प्रयासत कांठमाल मुकट शीश मोर पंख चाहे जियो बेवजीर बड़े तीर धर्म अंग अलख अगम खेल

बाल जन्म जन्म दी कटी सजन सच्चा पातशाह सिरसाह दे साहो जिस पास बैठिया सोही सब नंद विसाहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी श्लोक महला तीजा ब्रह्म बिंदे तिसदा है

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब कमाल, साहिब जमाल, साहिब बरकत, सर्व सांझी बालवर, बेअंत भगतां दी टेक, दसां पातशाहियां दी जोत, जागदी जोत, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जीआं दे पावन और पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जीआं दे

रहै। जो हर हृदय सदा वसाए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।